समय सुबह के 10 बज चुके हैं, 10:05:59 हुए हैं और ये है घड़ियां रेडियो अफ्रीका की, बड़ी प्रिसाइज होती हैं। दूसरा दिन का प्रोग्राम है बेमिसाल अंदाज आपके लिए और समय हमने देखना है आज के किस मुल्क में मौत की सजा आम हुआ करती थी लेकिन आइंदा नहीं होगी, इस पर खबर है। फिर मधुर संगीत, ऐसे गीत गाने जो आप आम किसी प्लेटफॉर्म पर सुन नहीं पाते, जैसे कि अभी अभी आपने ये गाना सुना। खैर सामिन, खबर अमेरिका से भी है कि आज का दिन ज़रा अनयूजल है। 16 बरसों के बाद आज का दिन ऐसा आया है जब 3 अमरीकियों को एक ही दिन फांसी दे दी जाएगी। 3, ये बहुत बड़ा फिगर है। सब पे कत्ल का इल्ज़ाम था, मौत की सज़ा दी जाएगी उनको अमरीकी तरीके के साथ। तो समझ ये है कि अब चलते हैं, कहते हैं कि मौत की जो सज़ाएं अमेरिका में दी गई हैं वो जब से ये नए सदर आए हैं ज़्यादा होती जा रही हैं, ज़्यादा लोगों को मौत की सज़ा दी जाती है।

छम छम से शुरू है समिन में मंजुला गोरसिया उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग खबर दी है कहने लगी कि तीन अदाकाराओं की आज दो की बर्थडे एक की बरसी है मैंने कहा कौन है कहने लगे वैजयंती माला आज 93 साल की 93 की हो गई योगिता बाली माशाल्लाह 74 की और अगर श्रीदेवी जिंदा होती तो आज वो 63 साल की होती 63 इन सब की बर्थडे एक ही दिन थी बहुत अच्छे और मंजुला गोरसिया ने बड़ी अजीब बात की है कहती है आज पता है क्या इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर्स डे है मतलब जो बाएं हाथ से लिखते हैं दाएं से नहीं राइट हैंड नहीं है लेफ्ट हैंडर्स हैं उनका आज सारी दुनिया दिन मना रही है तो मंजुला कहती है आज ये मेरा दिन है जो दुनिया मना रही है क्योंकि आप लेफ्ट हैंडर हैं मंजुला बहुत खूब समझ ये क्यों मनाया जा रहा है इसलिए कि ये लोग बड़े यूनिक होते हैं तो लेफ्ट हैंड से काम करने लिखने वालों का आज ये दिन इसलिए कि ये बड़े अद्भुत हैं और हमसे मुख्तलिफ हैं जो दाएं से लिखते हैं मुख्तलिफ हैं समिन एक आर्टिस्ट था इमेजिन एक कलाकार जो हो वो पेंट करता था तो लेफ्ट हैंड था उसका लेफ्ट हैंड से पेंट करता था मुझे उसका नाम दे दें ठीक है 0701 106 106 पर नाम दे दें और ये भी मुझे बताएं कि आपको कितने लोग जानते हैं जो कि लेफ्ट हैंडर हैं कोई है आपको जानता आप हैं तो बताएं आप यूनिक हैं

0: और सबसे पहले जो मैसेज आया है भरत गंगाराम का फ्रॉम लंदन, बहुत शुक्रिया आपका, आपने शुभकामनाएं भेजी हैं। और मैसेज जो मैंने कहा कि कितने लोग हैं लेफ्ट हैंडर्स हैं, वो तो सबसे पहले जैनुल मोहम्मद, वो कहती मैं लेफ्ट हैंडर, और जो आर्टिस्ट है उसका नाम भी बता दिए समीर, वो आर्टिस्ट सबसे मशहूर लेफ्ट हैंडर माना जाता है। और मंजुला गोरसिया ने योगिता बाली की भी बात वापस कर दी है, 74 टुडे। सैली डार इन लंदन, लाइफ इज अ पर्सनल रेस, नेवर डिपेंड ऑन एनीवन। वाकई सैली डार, थैंक यू। रंजन विनोद, सलाम और नमस्कार लंदन से तमाम लिसनर्स को ईस्ट एफएम के, बहुत खूब। और एक और मैसेज जो आया है वो है हुस्ना मोहम्मद का, क्या कहती हैं।
1: वालेकुम परिन जी, आप ठीक हो परिन जी? मेरी जो नवासी है अनाम, वो लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड है, और मेरा दामाद निजाम, वो भी लेफ्ट हैंड है, दोनों बाप और बेटी दोनों लेफ्ट हैंड है परिन जी, और इतनी होशियार है माशाल्लाह, दोनों बहुत ही होशियार है। अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज।
0: अल्लाह हाफिज। या बिल्कुल हुस्ना, ये लोग जो लेफ्ट हैंड से, कभी ये लोग तो नहीं कहना चाहते जो लेफ्ट हैंड से लिखते हैं, होशियार होते हैं, सभी कहते हैं। चलिए सुनते हैं सलमा।
2: हर सुबह एक नई रहमत लेकर आती है, हर मुश्किल एक नई ताकत देकर जाती है, बस यकीन रखो अल्लाह तुम्हारे साथ है, आज कल और हमेशा। शुक्रिया सुबह का प्यारा सलाम, सलमा आहमद के सुमो।
0: और आगे समझ, वो कहा था कल ज्योति फ्रॉम रूरू के, आप ना हमें शिरडी वाले साईं बाबा का सुना देंगे, ये शब्द है, भजन है, क्या है, जो भी है उनकी फरमाइश आज पूरी करते हैं।
3: दिस इज ईस्ट एफएम, केन्यास प्रीमियर एशियन मिक्स।
4: इट्स 10:21.
5: Imagine getting rewarded for the transaction fees you pay. With Airtel Money, every time you send money to any network, you get 50% back of your transaction fees into your cashback wallet. Buy electricity tokens and you'll get your units plus 50% cashback. And Airtel to Airtel, absolutely free. Why let transaction fees take your money when they can put that money back in your pocket with Airtel Money? Airtel Money. Download the My Airtel app or dial *334#. Back to Kenya's premier Asian mix. East FM.
3: East FM.
4: East FM.

और जैनुल कहती हैं कि आपको पता है मशहूर जो खिलाड़ी हैं टेनिस प्लेयर मार्टिना नवरातिलोवा वो भी लेफ्ट हैंडर थी मोनिका सेलेस भी नवरातिलोवा 59 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स इन्होंने अपने नाम किए थे नवरातिलोवा ने और कहते हैं जेंट्स में राफेल नडाल बिल्कुल जॉन मैकेनरो आपको याद होंगे जॉन मैकेनरो जिमी कॉनर्स ये सब लेफ्ट हैंडर थे बैडमिंटन में ज्वाला गुट्टा लेफ्ट हैंडेड हैं इंडिया की सबसे मशहूर विमेंस डबल्स प्लेयर ज्वाला गुट्टा 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स में सोने का तमगा पाने वाली अश्विनी पोनप्पा दिल्ली से हैं वो भी लेफ्ट हैंडेड 2011 वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल लेने वाली अश्विनी पोनप्पा ओके स्क्वाश में जहांगीर खान पाकिस्तान के साथ माया नाज प्लेयर थे 6 वर्ल्ड ओपन टाइटल्स कब से 81 82 83 84 85 88 6 टाइटल्स और 10 कंसेक्यूटिव ब्रिटिश ओपन टाइटल्स जहांगीर खान ने समय स्क्वाश के बहुत ही बड़े कहते दुनिया के सबसे मशहूर हिज एक्स्ट्राऑर्डिनरी 555 मैच अनबीटन रन लास्टेड फ्रॉम 81 टू 86 सिर्फ 5 साल 555 मैचों में ये कमाल था जहांगीर खान का और आगे बहुत इंटरेस्टिंग कोट भेजा है किसने शमीम ने वो पढ़कर सुनाती हूँ पहले ये

0: नॉर्वे के शहर बर्गन में है जयश्री शिकोत्रा, वो कहते हैं कि कार्लो मारिया मारियान वाज आल्सो लेफ्ट हैंडर, कहते हैं मेरी बेटी वैशाली लेफ्ट हैंडर है और ग्रैंड डॉटर इलारिया भी, दोनों लेफ्ट हैंडर। ओके, अब दुश्मनों की पहचान कब करनी है समिन? आप नहीं कर सकते। If you see your friend with your enemy, अगर आप देखते हैं कि आपका दोस्त आपके दुश्मन के साथ है, और ये अक्सर होगा समिन, आप देखेंगे जरूर, मुझे लगता है 100% होता है। You see your friend with your enemy, be sure that both are your enemy. अगर आप अपने दोस्त को अपने दुश्मन के साथ देखते हैं ना, तो वो याद रखें दोनों आपके दुश्मन हैं, वन ओपनली द अदर सीक्रेटली, एक खुला दुश्मन है और एक छुपा हुआ दुश्मन। वाह क्या बात है शमीम, दैट वाज अ गुड वन। और मैं, मेरा भाई, मेरी पोती सभी लेफ्टीज हैं। वाह, कहते हैं बड़े स्पेशल होते हैं ये लोग। अमीर अली राना, लियोनार्डो दा विंची, बिल्कुल सही जवाब था समन, इटालियन आर्टिस्ट थे, लेफ्ट हैंड से पेंट करते थे। लखबीर, आई एम लेफ्ट हैंडेड, और आंसर है लियोनार्डो दा विंची, बिल्कुल। चिराग पटेल फ्रॉम कैराटीना, करेक्ट आंसर आपका भी है। मंजुला विश्वकर्मा, आपने कहा है पिकासो, नो वो लियोनार्डो दा विंची थे। और यहाँ पर हैं लक्ष्मण सिंह, लक्ष्मण सिंह ने क्या कहना है सुनते हैं।
1: प्रवीण जी सत श्री अकाल, मेरे लड़के का और लेफ्ट हैंड है, उसका भी जन्मदिन 10 तारीख का है, अगस्त का, और मेरा दोता उसका भी 1 अगस्त का जन्मदिन था, वो भी लेफ्ट हैंड है, दोनों ही लेफ्ट हैंड है, बहुत लकी है।
0: अच्छा, दोनों की का जन्मदिन अगस्त का, लक्ष्मण सिंह आपने कहा, और दोनों लेफ्ट हैंडर हैं, बहुत अच्छे। अब दीपक वटगामा, आपने कहा हमारी बेटी लेफ्ट है, इसका मतलब सामने काफ़ी ज़्यादा है लेफ्ट हैंड। पिछले पुराने ज़माने में तो एक आधा सुनने को मिलता था और वो बन जाता था कुछ ख़ास, लेकिन अब तो मैं देख रही हूँ कितने लोगों ने कहा है। अच्छा, दीपक वटगामा, आपकी बेटी लेफ्ट हैंडर है, गुड टू नो दैट।

0: That's playing for Finished FM. Here is Premier Asian Mix. This is the City Lights with Vishal. And I have to reveal the answer for the Translate Challenge. Abhi time aage hai to reveal the answer for the Translate Challenge. And the movie today that I was looking for was none other than Rangila. Colorful in English, and in Hindi it sounds like this: Rangila, starring Aamir Khan, Urmila Matondkar and Jackie Shroff in the lead roles. Fastest finger first, none other than Meera from Kisumu. You have given me the correct answer. So has Balbir Kaur Sabarwal from Eldorate. Aapne bhi mere ko bilkul sahi jawab diya hai. Sangeeta, as always, you have given me the correct answer. And of course, I have got Rasila ji. Aapne bhi mere ko bilkul sahi jawab diya hai. Thank you so much for your answers and for your company. And main milunga aapko kal on the City Lights with Vishal. Same time from 7 PM to 9 PM. But ek cheez hai jo maine aapko सेकेंड आवर की शुरुआत पे बोला था मैंने, एंड आई वॉन्ट टू रिपीट दिस बिकॉज टुमारो इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शो. वाई? सो ऑन सैटरडे द 15th ऑफ ऑगस्ट, 15 अगस्त है, वी आर सेलिब्रेटिंग द इंडिपेंडेंस डे. इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ऑन दिस डे, सो वी आर सेलिब्रेटिंग द इंडिपेंडेंस डे. एंड कल ऑन द शो On City Lights, we are going to celebrate Independence Day. So, तैयार होके आना कल. आपका मिक्सो बीट चैलेंज अभी हिंट दे देता हूँ, देशभक्ति के गाने होंगे एंड ढेर सारी बातें करेंगे अबाउट इंडिपेंडेंस एंड ऑफ कोर्स द हीरोज दैट वी सल्यूट टू अप टू टुडे. सो अंटिल देन, आप अपना ख्याल रखिएगा एंड सी यू टुमारो.
1: No one plays more of your Bollywood favorites.
2: Gulabi saadi ani lali lal la.
3: Oh mahi, kitno ki love story yahan, kesariya tera.
1: Buzz East FM, Kenya's premier Asian mix.
4: East FM, Kenya's premier Asian mix.